0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 7 बज्यो।

0: सामाजिक सञ्जाल जी छ्यानले जाँझी मरी बुझी मरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलोलना खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उइसु सु खन क्या खलो सुजित बिमिलो खन यामु बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दिब वेबसाइट ना यूआरएल चेक लना आछेवा घटना तल आपिबै लागि समय समयरी आफैना पासपोर्ट फेरदिल परिमो नुई तोय तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
1: सतर्कता न ठगे तब त क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: श्री ठाकुरा प्रश्न विचार
1: उजालो रेडियो नेटवर्क
2: सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
3: ओ गुरुजी, पैदल यात्रीलाई किन पेल्नुहुन्छ? तपाई त सड़क खुल्ला हुना साथ दौड़िन सक्नुहुन्छ, तर पैदल यात्रीले त तपाईको जस्तो सुविधा पाउनु नि त।
2: श्री प्रदी तथा टाटा मोटर्स को सहकारिया

0: उज्यालो रेडियो नेटवर्क देयथिथि एफएम स्टेशन अनलाइन पाखे हलिङ्क छक्ल प्रसारण जुया चंगु सुथसेचिता या नेपाल वासबुखे प्राविधिक पास प्रवीण श्रेष्ठले जी सल्ला राज उपाध्याय जजलपा दक्ले नापा मोबुख अनला पुरुषोत्तम बैना थौको चाइगु कन्यादल से तछला सुशासन उत्पादन एव विशेष हेगुली प्रदेश थौ बजे थैगु बजेट आकार त दजु सान खर्च हेगु क्षमता थास कमजोर व अलका खिचा नापा पिसु पन्या करे शान्ति पदयात्रा टोली लुम्बिनी थौ ये थंक गइगु खनेना दिस पोगुख अनला अर्थ पुरुषोत्तम बैना थौको चातेंगु दु सूर्यमान व चन्द्रमान दथुई पागुली श्री नीला चिनखुनु पेंगु कडी लिपा मलमा सुइगु खासा सूर्यमान अन्तर्गत स्वस व खुई न्यानु या दछि व चन्द्रमान अन्तर्गत स्वस व नेपेनु या दक्षी जिगुली चिनिला पत्तिका चिन्छनु पाया हुने गुख थुकत श्रीनिला चिनखुनु पेङ्गु घडी लिपा तसा जुइगु लच्छी अधिक मास अर्थात मल मास्य रूपे चुनिगु खस तुक्सी वंगु जे तीन गति निशे अनला सुरुचु गुख अवलेन्सी यहाँ मत्स्य नारायण देगले मेला सुरुचु गु खस उगु मेला न थौ कच्याङ्गु अथे सोनिगाई थि थि थासे यहाँ नाचुङ्गु पुरुषोत्तम महात्म्य बाख कनेगुलिसे सोनिग न्याङ्कय नारायण देगले लच्छी तक्क जुगु पुरुषोत्तम नारायण या हिमाय बाख कनेगुन थौ कचातेङदु अथे थाडिगे त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका दुगु नृसिंह धामेन लक्षी तक्क मेला जुगुली थौ कचातेङदु अनला जोची भिङ्कुगु यलय हिरण्यवर्ण महा बिहारे प्रज्ञा पारमिता सफुया कने जिम्न्यास्ते तेङ्गु दुसा कने नसिंह तछल्ला न्यायस अनला जोची यामोजीगु धार्मिक ज्याखन कन्या नसिंह सुचारुजी थ्यो दथुई वैगु शनिवार सिथि नख लागुदु नेगुली प्रदेश सरकार अथवा आर्थिक वर्ष 2083-84 बजेट सार्वजनिक यात्रीगुदु सुशासन आर्थिक वृद्धि रोजगारी कृषि पर्यटन स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक न्याय त प्राथमिकता तसे बजेट हेगुदका प्रदेश सरकार त्यसमा तयारी यहाँ नचुगुदु गुगु प्रदेश नापाङ्गु दशिवे आका अपुएका गुनिसिया कोपाला व गुनिसिया उलिहे ल्याखे बजेट हेतुगुदु चालू आर्थिक वर्ष नेगुली प्रदेश मुक्क सुङ्गु खर्ब निगु अर्ब तका मल्याक बजेट हक प्रदेशगत रूपे सेवले बागमती प्रदेश बजेट तकले तदंगु व गण्डकी लिसे कर्णाली तुलनात्मक रूप चिधंगु बजेट दुगु खसा प्रदेश बजेट तदंक हसान खर्च यायु क्षमता दास कमजोर जियाचुङ्गु दु योगको प्रदेश पूँजीगत खर्च नेगु प्रतिशत सिबे कम जियाचुङ्गु दुस आर्थिक वर्ष 2083-84 लागि संघीय सरकार नेगुली प्रदेश या त थिथि शीर्षक याना छगु खर्ब गुङ्गु अर्ब खुइ न्यागु कर सुइ न्यागु लखतका अनुदान उपलब्ध याकेगु व्यवस्था यागुख तो चालू आर्थिक वर्ष सिबे करिब चिन निगु अर्ब गुङ्गु कर तक्का अपखसा थुकी वित्तीय समानीकरण सशस्त्र सम्पूरक व विशेष अनुदान समावेश ज्याचुङ्गु दुस संघीय सरकार पाखे वगु अनुदान राजस्व बाँडफाँड प्रदेश या आन्तरिक राजस्व नापाङ्गु दया मौजात रकम या आधार प्रदेश देश बजेट दिगेको ख प्रदेश देगु कुल बजेट या योगको हिस्सा अजन संघीय सरकार निर्भर ज्याचुङ्गु दुस संविधान अनुसार प्रदेश सरकार असार 1 गते बजेट सार्वजनिक यामागु प्रावधान दुस थोयान्य संघीय सरकार वगु जेठ 15 गते बजेट हगु विश्व शान्ति करूणा व मैत्री सन्देश फैलैयाको उद्देश्य नाप सञ्चालन ज्याचुङ्गु वाक फर पीस अभियान अन्तर्गत भियतनामी बिच्छु पन्याकर्य नेतृत्व दुगु अन्तर्राष्ट्रिय पदयात्रा टोली मिग बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी थ्याङ्कवगुदु टोली चिन्च्यामा बिच्छु घिसिङे उपासक उपासिका नाप अलोका नाय खिचान दुथ्या शान्ति अहिंसा व करूणा सन्देश जोना ह्यानाचुङ्गु पुचल लुम्बिनी विशेष धार्मिक लिसे आध्यात्मिक ज्याजु यागुदु मियाबनी टोली लुम्बिनी दुगो अखण्ड शान्ति दीप लागे मायादेवी देग तक्क शान्ति पदयात्रा यागो ख मायादेवी देगले जुगु ज्याजुले बिन्छु पन्याकर बुद्ध या शिक्षा या आत्मसात यासे निर्वाण व परम आनन्द या मार्ग न्या हो मागु आवश्यक जुगु थ्यादिल अथे वेकल यात्रा दुथ्यामा अलोका खिचाबारे चर्चा यासे वेकल खिचाता इलसे यात्रा नपहे न्यासी ज्याचुङ्गु व आ शान्ति प्रतीक लिसे दुत्या रूपे स्थापित जुगु थ्यादिल पदयात्रा टोली ये ठ्याङ्क वेगु च्याजोदु ये बौद्ध स्वयम्भू चारुमती व आनन्दकुटी बिहारी अवलोकन लिपा बनी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नापलाइगु च्याजोदु सीधा कुरा प्रश्न विचार थोखा उज्यालो रेडियो नेटवर्क स्वनिगले चेसानमे गहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क दे अतिथि एफएम स्टेशन अनलाइन पाखे हलिङ्क छक्ल प्रसारण जिया चंगु सुथ सेचिता ये नेपाल वास बुखाचे सन्यना छना दिगु दु बुखे अज ल्यादनी थनिसे वइगु भदौ तक भदौ मसान्त तक सडक मुइ मदैगु वर्ड फ्लू पुस्ति जुपि नेगु लख पञ्चि नस्त किसान या त क्षतिपूर्ति बिगु व लोक सेवा आयोग थौ थगु निसोंगु नेखुद बुद्धि हनात सोंगु दु उज्यालो रेडियो नेटवर्क न्याचना दिसा
1: सुन त मेरो कपडा प्याकिङ गर्दिउ त श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो
2: ए हो र अनि सुन्नु त अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिङ भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर फोक्सोको क्यान्सर स्तन क्यान्सर घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर पाठेघरको मुख गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीड़ितहरूका लागि 1,00,000 छुटको व्यवस्था पनि छ
1: ओहो यस्तो सुविधा रहेछ ल अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छु
3: क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट
4: फोन 056-494-333-493-555
0: उज्यालो रेडियो नेटवर्क दे अतिथि एफएम स्टेशन अनलाइन पाखे हलिङ्क छक्ल प्रसारण जुया चंगु नेपाल वास बुखे हाकनाच त लस्कुस्तु आत्तकयमु बुख हाकनाचका अनला पुरुषोत्तम मैना थौ कुचाइगु सुशासन उत्पादन ब विषय नेगुली प्रदेश थौ बजेट हाइगु व अलोका किचा नाप पिच्छु पन्याकर्या शान्ति पदयात्रा टोली लुम्बिनी थौ ये ठंक वैगु अल्यादनिको बुख थलिसे वैगु भदौया मसान्त तक्क सड़क मुहि मदैगु चुकुदु संघीय सड़क सुपरिवेक्षण निसे अनुगमन ज्याकु बबर महन मिग सुचा पिकासे थोनिला सड़क मुई मदै गुर्गा थागोका बर्खा हिती थ बिजुली टेलिफोन थजागु ज्याइनीति सड़क मुहिबले थथे भिङके मफैगुली मुई त पनगुर्गा सूचना यथाना तगु दुसा सूचनाका नालामा कासे सड़क मुसा कारवाही यागुर्गा न ज्याको थिए थागुदु पशु सेवा विभाग स्वनिग नाप बर्ड फ्लू पुस्ती जुगु झिगु जिल्ला नेगु लख पञ्ची नस्त यानगुडका थागुदु विभागीय कथन प्रभावित लाग्या रोग नियन्त्रण या त पञ्ची अर्थात सँग नाप सुङ लख किलो दाना नस्त यागुख काठ यल खोप चापा मोरङ सुनसरी महत्तरी बार चितवन व नवलपरासी खण्ड दुगु लुए या त निङ्के मबित सम्बन्धित जिल्ला रापिड रेस्पोन्स टीम परिचालन यानगुडका विभागीय महानिर्देशक डाक्टर उमेश दाहाल जानकारी ब्यादिल बर्ड फ्लू या खोप विकास मजुगुली संक्रमण खने सातकी हे छङ्ग लिसे सपुदुग उत्पादन नष्ट यागु खस अथे झिन्छगु लख खेन नष्ट यागुदु सम्बन्धित विभागीय त नष्ट यापी पन्छी अर्थात झङ्ग या नोक्सानीय मूल्याङ्कन या क्षतिपूर्ति उपलब्ध याकेगुका विभाग थागुदु लोक सेवा आयोग निसङ्गु थौ नेखुद जुगुदु नेखुद बुदिया छोले आयोग थिथि ज्याजैन हनाछुगुदु आयोग या केन्द्रीय ज्याकुलिसे ये सङ्गु व येन पिनेचिन छगु ज्याकु दुसा आयोग या फुक ज्याकु थिथौ स्थापना दिवस या छोले ज्याजो चुइतङ्गुदु नेपाली संविधानीय निजामती सेवा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल व मेमेगु संघीय सरकारी सेवा पद सेवा लागि पदे पदपूर्ति यागु या त काइगु लिखित परीक्षा यागु जिम्मेवारी आयोग या त ब्या तगुदुसा आयोग सरकारी सेवा दुहावनीको चोले जनशक्ति लेगुलिसे पदपूर्ति या त सिफारिस यानवै चंगुदु आयोग औपचारिक स्थापना 2008 साल असार 1 गते जुगो ख सूरी आयोग ना पब्लिक सर्भिस कमिशन तया तगु ख थौकने लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश तराई लाग्या तानुग अपैग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा धागुदो अथे अजन सुदी थथे जीगुर्गा मौसम वित्तेस अनुमान यागुदो थौ कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश हिमाली लिसे पहाड़ी लगाए छुछ थासे व लुम्बिनी कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश हिमाली लिसे पहाड़ी लगाए छगुनीगो थासे नयाना मलसे मध्यम कथै वाबैको सम्भावना जुगो महाशाखा धागुदो अथे कोशी प्रदेश तराई कम थासे व मधेस प्रदेश या छगुनीगो थासे न मध्यम कथ वाबैको अनुमान याना तगुदोसा हंसा जाने कोशी प्रदेश हिमाली छे पहाड़ी लगाए छूसो थासे नन्याना मलसे मध्यम कथाई वावैगु अथे चपुआ गाईगुन सम्भावना दुगु महाशाखा थागु दु अथे बागमती व गण्डकी प्रदेश छगुनीगो थासे हल्का वावैगु अनुमान याना तगु दुसा देया पहाड़ी भूभाग लिसे कोशी मधेश बागमती व गण्डकी प्रदेश तराई लागे आमसिक बदली जुया लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश तराई लागे मौसम मुख्यतया सफा जिगरका महाशाखा थागु दु सीधा कुरा प्रश्न विचार थोखा उज्यालो रेडियो नेटवर्क चुनिगले चेसा नमे गहज थौया नीति नेपाल भाषा बुखान थनी कुच्चल चिनिता इले हाकना नेपाल खबर जना विगु हेजी दक्ले लिपा थौया मोबुखा हाकन छक अनलापुर सतम महिना थौ कचाइगु कन्या नसे तछला सुशासन व उत्पादन ब विषय नेगुली प्रदेश थौ बजेट हैगु बजेट आका त जुसान खर्च यगु क्षमता दास कमजोर व अलक खिचाना प बिछु पन्या कार्य शान्ति पदयात्रा टोली लुम्बिनी थौ या थंक विगु नेपाल भाषा बुखान सिसा उज्यालो रेडियो नेटवर्क सोनी गले चेसा नमी घास नपाउँदै एटीथि एफएम स्टेशन अनलाइन पाखे हलिङ्यङ क छक्न अन्य नदी गुजुल उज्यालो रेडियो नेटवर्क या उज्यालो अनलाइन .com मे ताजा खबर नेने नपम पनि पहिले

0: बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियो
1: जसको नाम नै पर्याप्त छ
2: दिदी बहिनी
1: दिदी बहिनी
2: दिदी बहिनी
1: रेडियो दिदी बहिनी हामी गर्न सक्छौ
2: हामी गर्न सक्छौ
1: गर्न सक्छौ

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास
1: 99.4 रेडियो थाहा संचार स्टुडियो टाइम
0: इट्स 10 p.m.

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे, और अब पूरे हैं हम।